0: the radio, web, and mobile app.
1: Metro Plus.
0: Metro Plus, your connect.
1: Your connect.
2: The annual review of the statutory minimum wage has been implemented. Employees covered by the minimum wage ordinance are entitled to receive the minimum wage, regardless of their modes of employment. From the 1st of May 2026, the statutory minimum wage is raised to $43.10 per hour. Employees with disabilities may opt for a productivity assessment and receive wages accordingly. For details, call 2717 1771.
3: It's my life, it's now or
4: never. Metro Plus AM 1044 presents John Bon Jovi on Life.
5: Life is for the living. You have to make the most of it.
4: On Family.
5: Live your life with your family, with your friends, with your music. But always live your life without drugs. Because living your life with drugs means you have no life at all.
4: Life with drugs. No life at all.
6: This program is brought to you by Home Affairs Department. The views expressed within this program are that of the host and their guest and does not necessarily reflect the views of this station, Metro Plus AM 1044.
7: Namaste, Sasriya Ka Salam. Kidda ho ji sare badiya, appa ji, bohut badiya. Aaj hai ji 4 September 2026. Shuru karte hain ji hamara show. We have, I think, around 6 announcements. To announcements suna ke fir main aap sabke non-stop gaane laga dunga. Theek hai? Shuru karte hain with our first announcement. Ye hai ji application for primary 1 admission for school entry in September 2027. प्राइमरी वन एडमिशन 2027 के लिए एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है. अगर आपका बच्चा 31 दिसंबर 2021 या उससे पहले पैदा हुआ है और सितंबर 2027 में गवर्नमेंट या एडेड प्राइमरी स्कूल में प्राइमरी वन ज्वाइन किया करेगा तो वो प्राइमरी वन एडमिशन 2027 में पार्टिसिपेट कर सकता है. ये प्रोसेस इस साल सितंबर से शुरू होगा. एप्लीकेशन फॉर्म, एक्सप्लेनेटरी नोट्स और इंफॉर्मेशन लीफलेट 1 सितंबर से 25 सितंबर 2026 तक अवेलेबल रहेंगे. फॉर्म आप अपने बच्चे के किंडरगार्टन या किंडरगार्टन कम चाइल्ड केयर सेंटर से ले सकते हो. होम अफेयर्स इंक्वायरी सेंटर्स, रीजनल एजुकेशन ऑफिसेस या एजुकेशन ब्यूरो के स्कूल प्लेसेस एलोकेशन सेक्शन से भी ले सकते हो. डिफरेंट लैंग्वेजेस में इंफॉर्मेशन नोट्स एजुकेशन ब्यूरो की POA वेबसाइट से मिल जाएगी. कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ 21 और 25 सितंबर 2026 के बीच स्कूल आवर्स में अपने चॉइस के एक गवर्नमेंट या एडेड प्राइमरी स्कूल में सबमिट करें डिस्क्रेशनरी प्लेस के लिए. जो पेरेंट्स प्राइमरी वन एडमिशन ई प्लेटफॉर्म यूजर्स हैं और अपना अकाउंट IM स्मार्ट प्लस से लिंक किया है वो 17 से 25 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं. लेटेस्ट अपडेट्स के लिए एजुकेशन ब्यूरो के प्रेस रिलीजेस और POA वेबसाइट चेक कर सकते हैं. कोई सवाल हो तो एजुकेशन ब्यूरो के स्कूल प्लेसेस एलोकेशन सेक्शन पर कॉल कर सकते हैं. नंबर है 2832-7700. ओके, बढ़ते हैं जी अगले अनाउंसमेंट पर. ये है जी सर्विकल रिसीव रेगुलर सर्विकल स्क्रीनिंग. हांगकांग में महिलाओं में सर्विकल कैंसर बहुत कॉमन है. रेगुलर स्क्रीनिंग करवाओ तो इसको बहुत हद तक रोका जा सकता है. अगर आपकी उम्र 25 से 64 साल के बीच है और सेक्सुअल एक्सपीरियंस किया है तो रेगुलर सर्विकल स्क्रीनिंग जरूर करवाइए. बहुत सी महिलाएं जिनको HPV वायरस या HPV वायरस है या कैंसर शुरुआती स्टेज में है उनको कोई लक्षण नहीं दिखते. याद रखें चाहे कोई लक्षण ना हो, HPV वैक्सीन लगा हो या मेनोपॉज हो चुका हो तब भी स्क्रीनिंग करवानी बहुत जरूरी है. स्क्रीनिंग करवाने के लिए मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर्स, वुमेन वेलनेस सैटेलाइट्स, फैमिली डॉक्टर, गायनेकोलॉजिस्ट या NGOs के पास आप जा सकते हैं. डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ में बुकिंग भी कर सकते हैं आप. नंबर है 3166-6631. जनवरी 2026 से वुमेन वेलनेस सैटेलाइट्स में HPV सेल्फ सैंपलिंग की सुविधा शुरू हो चुकी है. हांगकांग आइलैंड का नंबर है 2855-1333, कालून का हॉटलाइन है 2855-1222, न्यू टेरिटरीज का हॉटलाइन है 2851-1722. ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं. www.cervicalscreening.gov.hk. अपना ख्याल रखें, रेगुलर स्क्रीनिंग करवाएं. ओके, बढ़ते हैं जी हमारे अगले अनाउंसमेंट पर. दिस इज हेल्थ टिप्स फॉर प्रिवेंटिंग हीट स्ट्रोक. सेंटर फॉर हेल्थ प्रोटेक्शन याद दिलाता है, बहुत गर्मी में हीट एक्सॉस्टन और हीट स्ट्रोक से बचिए. सेफ रहने के लिए रेगुलर पानी पिए, कैफीन और अल्कोहल से बचें, हल्का और ढीला कपड़ा पहने, हवादार या एयर कंडीशनड जगह में रहे, बाहर ज्यादा मेहनत वाला काम मत करें, आउटडोर एक्टिविटीज सुबह या शाम को प्लान करें, आउटडोर वर्कर्स रेगुलर ब्रेक लें और छांव में आराम करें. बच्चे, बुजुर्ग, प्रेग्नेंट महिलाएं और क्रॉनिक बीमारी वाले लोग ज्यादा केयरफुल रहें. बच्चों को कभी भी बंद गाड़ी में अकेला मत छोड़ें. यूवी इंडेक्स हाई हो तो सीधा धूप से बचें. SPF 30 या उससे ऊपर सनस्क्रीन लगाएं. यूवी ब्लॉकिंग सनग्लासेस पहने और छांव में रहे. अगर चक्कर आए, सिर दर्द हो तो और उल्टी जैसे फील हो या कंफ्यूजन हो तो तुरंत का आराम करें और डॉक्टर से मिलें. गर्मी में अलर्ट रहें, कूल रहें और अपना ख्याल रखें. ज्यादा जानकारी के लिए आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं, www.chp.gov.hk. ओके, पढ़ते हैं जी अगले अनाउंसमेंट पर. दिस इज जॉब फेयर टू बी हेल्ड ऑन 17 सितंबर 2026. लेबर डिपार्टमेंट एक इंक्लूसिव जॉब फेयर ऑर्गेनाइज कर रहा है एथनिक माइनॉरिटीज के लिए. तारीख है 17 सितंबर 2026. टाइम दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे तक. जगह चिनवान जॉब सेंटर. 3 कंपनीज, शंग्रिला होटल कावलून, CCG प्रॉपर्टी सर्विसेज और 10 सर्विस हांगकांग लगभग 100 से ज्यादा जॉब्स ऑफर कर रहे हैं. पोजीशंस हैं जैसे ऑन साइट टेक्नीशियन, कस्टमर सर्विस एम्बेसडर, असिस्टेंट प्रॉपर्टी ऑफिसर, क्लीनर, सिक्योरिटी गार्ड, कॉन्सियज असिस्टेंट, रूम अटेंडेंट, होस्ट, होस्टेस, कॉमीज और बहुत कुछ. ज्यादातर जॉब्स में चाइनीज लैंग्वेज की जरूरत नहीं है या बहुत कम है. इम्प्लॉयर्स वहीं पर ऑन द स्पॉट इंटरव्यू करेंगे. फ्री इंटरप्रिटेशन सर्विस भी अवेलेबल है. रिजर्वेशन जरूरी है. एथनिक माइनॉरिटी जॉब सीकर्स का स्वागत करते हैं. ज्यादा डिटेल्स के लिए आप www.jobs.gov.hk पर जा सकते हैं. जरूर आइए और अपना जॉब फिक्स करिए. ओके, अगला अनाउंसमेंट यह है जी, लार्ज स्केल जॉब फेयर फॉर एथनिक माइनॉरिटीज. द लेबर डिपार्टमेंट शुरू करने वाला है एक

लार्ज स्केल जॉब फेयर जिसका नाम है बिल्डिंग अ मल्टी कल्चरल वर्क प्लेस जॉब फेयर। ये होगा मैकफर्सन स्टेडियम में और ये होगा मॉन्कॉक में और ये होगा 16 सितंबर और 17 सितंबर को। कुछ 50 एम्प्लॉयर्स होंगे, बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऑफर कर रही हैं वाइड रेंज ऑफ जॉब वैकेंसीज। इवेंट के दौरान आपको काफ़ी सारी जॉब्स के लिए इंट्रोड्यूस कराया जाएगा और डिस्प्ले भी कराया जाएगा जॉब सीकर्स के लिए और ऑन द स्पॉट आपसे एप्लीकेशन भी ली जाएगी। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं प्लीज ये अपॉर्चुनिटी लीजिए, जॉब फेयर को जॉब फेयर में हिस्सा लीजिए जो कि खुला होगा सुबह 11 बजे से शाम के 5:30 बजे तक। और जानकारी के लिए पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन और वैकेंसीज के लिए आप प्लीज इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। वेबसाइट है जी www.jobs.gov.hk। ओके, आते हैं जी हमारे आखिरी अनाउंसमेंट पर। ये है जी वर्किंग फैमिली अलाउंस स्कीम। वर्किंग फैमिली अलाउंस स्कीम जिसे शॉर्ट में WFA भी कहते हैं अब एप्लीकेशन के लिए खुला है। ये हाउस होल्ड के नाम पर अप्लाई होता है, पूरा हाउस होल्ड हांगकॉन्ग रेसिडेंट होना चाहिए। अगर आपके घर वालों के टोटल वर्किंग आवर्स, इनकम और एसेट्स लिमिट के अंदर हैं तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। एक महीने में एक से ज्यादा जॉब्स के वर्किंग आवर्स काउंट किए जा सकते हैं, फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों। अलाउंसेस के टाइप्स हैं, टोटल 144 आवर्स या उससे ज्यादा तो वो आते हैं बेसिक अलाउंस में, 168 आवर्स हो या उससे ज्यादा तो वो आते हैं मीडियम अलाउंस में, 192 आवर्स या हो या उससे ज्यादा तो वो आते हैं हायर अलाउंस में। हाउस होल्ड की इनकम के हिसाब से आपको फुल रेट, थ्री क्वार्टर या हाफ रेट मिल सकता है। फुल रेट है बेसिक के लिए 1150 हांगकॉन्ग डॉलर पर मंथ, मीडियम के लिए 1380 हांगकॉन्ग डॉलर पर मंथ और हायर के लिए 1610 हांगकॉन्ग डॉलर पर मंथ। हर एलिजिबल बच्चे के लिए एक्स्ट्रा चाइल्ड अलाउंस भी मिल सकता है, उसका फुल रेट है 1610 हांगकॉन्ग डॉलर पर मंथ और पर चाइल्ड। नोट कीजिए, जो घर WFA ले रहे हैं वो साथ में कॉम्प्रीहेंसिव सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंस नहीं ले सकते। पूरी डिटेल्स, इनकम, एसेट, इन लिमिट्स और एलिजिबिलिटी के लिए वेबसाइट आप चेक कर सकते हैं www.wfa.gov.hk। कोई सवाल हो तो 24 आवर हॉटलाइन पर आप कॉल कर सकते हैं, नंबर है 2558-3000। ओके, तो जी आते हैं सीधा प्लेलिस्ट पे। पहला गाना है जी, मनी ने रिक्वेस्ट किया है पैर दी मिट्टी, उसके बाद आते हैं अमृतपाल सिंह जिन्होंने रिक्वेस्ट किया है टुपका टुपका भाई बब्बू मान, फिर आते हैं यसीन मोहम्मद, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है फर्जी भाई चीमा वाई, फिर आते हैं अनम जिन्होंने रिक्वेस्ट किया है सिर्फ बाय बलवान एंड सिग्नेचर बाय SB, फिर आते हैं कल्पना, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है रिंकल बाय याद, फिर अमृत संधु हु रिक्वेस्टेड इफ यू नो यू नो बाय जग्गी, फिर जी आसिम खान जो जिन्होंने रिक्वेस्ट किया है लौट भी आओ फ्रॉम द फिल्म आवारापन पार्ट 2, फिर आए जी रूबी जिन्होंने रिक्वेस्ट किया है पहली दफा में, उन्होंने एक और गाना रिक्वेस्ट किया है पहले तो नहीं बैदान जी, देन वी गॉट यसीन विद नाइफ ब्राउज बाय धंडा नियोली वाला, अमृत संधु अगेन कट बाय रानी एंड प्रिंस रंधावा एंड देन CH जेला सिद्धू मूसेवाला। ऑलराइट गाइस, आप ये गाना एंजॉय कीजिए, मैं मिलता हूँ जी आपको नेक्स्ट फ्राइडे सेम टाइम सेम प्लेस, तब तक के लिए जी चिल करो, टेंशन ना लो, चढ़ दी कला चढ़ो, रब रखा, गुड नाइट एंड गुड बाय।